नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदो से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग

0: योग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦତ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ରଚନା ଲୋକଜନନୀ ପଣ୍ଡା।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

0: दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तं। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयं अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं चतुर्विंशत्यधिक त्रिशताधिक एकोनविंशति सहस्र मतैः पराजितवान्। असौ एक पञ्चाशदधिकैक शताधिक चतुष्षष्टि सहस्र मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीका भाई रबारी इत्येनं 30,000 मतैः पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000 मतैः पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधी विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतीय क्रीडकै ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000 वर्षस्य राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतं पदक तालिकायां चतुर्थ स्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी राउरकेला स्वतंत्र वर्तमान आसन्तु जानिबा आमर आजिर अधिवेशनरे प्रसार भक्तवा केतोटी कार्यक्रम संपर्कने सूचना कार्यक्रम आमर स्वास्थ्य शुणे सकाळ 7:10 रिले करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। खेल जगत कार्यक्रम सकाळ 7:25 एथिरे शुणे आत्मरक्षार खेल कराटे ए संपर्कने शुणे कराटे कोच सत्यभान साहूंक सह साक्षात्कार। सुगम संगीत सकाळ 8:30 बणपाड़ गीत सकाळ 8:45 एथिरे शुणे मुंडा गीत परिवेषण करिछन्ति वृद्धि चंद्र गुरिया एवं साथी। विविध भारती कार्यक्रम सकाळ 9:00 अपराह 5:00 पर्यंत इतिमध्यरे सिने संगीत कार्यक्रम सकाळ 10:00 एवं पूर्वाह्न 1:00 शुणे कार्यक्रम सृजनिका एथिरे शुणे धोबी बेहरा कविता एवं शिवाशीष पाढ़ी क्षुद्रकल्प एवं मध्याह्न 12:00 शुणे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग्र आज शुणे 1342 भाग। अपराह 5:00 भक्ति गीत कार्यक्रम आरती 5:20 श्रीमद भागवत आज रही 474 भाग। ओडिया भक्ति गीत कार्यक्रम अपराह 5:30 6:10 शुणे ओडिसी गीत कार्यक्रम उदय भारत संध्या 6:30 रिले करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। जिला हालचाल राति 7:25 आज रही केन्द्रापड़ा जिला संपर्क में राति 7:30 शुणे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी रिले करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। राति 8:00 संसद समीक्षा रिले करिबो आकाशवाणी दिल्लीरु। राति 8:15 हेलो राउरकेला कार्यक्रम विविध भारती कार्यक्रम राति 9:15 संसदर प्रश्नकाल रेकर्डिंग शुणे राति 10:00 रिले करिबो आकाशवाणी दिल्लीरु। ଏଇ ଥିଲା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆମର

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना मध्यम प्राय 60 कोटि लोक 5 लक्ष टंका पर्यंत मागणा उपचार पई होईछंते योग्य हिताधिकारी एपर्यंत 12 कोटि रु ऊर्ध मागणा चिकित्सा करा जायछि जेउथरे गरीब परिवारक चिकित्सा खर्च प्राय 2 लक्ष कोटि टंका संचय होई परिछि। आज ही आयुष्मान आप डाउनलोड करी आयुष्मान कार्ड बनंतु। अधिक सूचना पई 14555 नंबर को कॉल करंतु।

0: ଖେଳର ଆରମ୍ଭ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୈନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୌଶଳ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ, ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। କବାଡ଼ି ଖେଳ ସରଳ, ଶସ୍ତା ଏବଂ କମ୍ ଜାଗାରେ ହେଉଥିବାରୁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଖେଳ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ଖେଳଟି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେପରି ଏହି ଖେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚେଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ହୁତୁତୁତୁ, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହୁଡ଼ୁଡ଼ୁଡ଼ୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଖେଳଟି ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବଂଲାଦେଶ, ଜାପାନ ଓ ଇରାନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ। କବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ନାମ ହେବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ 1918 ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଥିଲା। 1950 ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କବାଡ଼ି ଫେଡେରେସନର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। 1954 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଆୟୋଜିତ କରାଗଲା। 1972 ଆମାଚର କବାଡ଼ି ଫେଡେରେସନ ଏବଂ 1978 ଏସିଆନ ଆମାଚର କବାଡ଼ି ଫେଡେରେସନର ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ବନ୍ଧୁ,
1: ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି। ଏବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା।
0: ସାର୍ ନମସ୍କାର।
2: ନମସ୍କାର।
0: ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଖେଳ ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଟିକେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେବେ।
2: ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ମୁଁ ଯାଇ ଏହାପରେ ବୁଲାଏ, ଇସ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମେରା ନାମ ସେନ୍ସେଇ ସତ୍ୟଭାନ ସାହୁ ହେ। ସେନ୍ସେଇ କରାଟେ ମେ ମାଷ୍ଟର କୋ ବୋଲତେ ହୈଁ, ଗୁରୁ କୋ ବୋଲତେ ହୈଁ।
0: ଆଜ୍ଞା।
2: ଔର ୟେ ମେ ସୋତୋକନ କରାଟେ କା ଚିଫ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ହୁଁ ଔର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜାପାନ କରାଟେ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାଞ୍ଚ କା ହୁଁ।
0: ସାର୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ କରାଟେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ କରାଟେ ଶିଖେଇ ସାରିଲେଣି, କରାଟେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଅନେକ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କରାଟେ ଖେଳରେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରାଟେକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବେ।
2: ଦେଖି, କରାଟେ ତ ମୁଁ 1979 ଶୁରୁ କି ହେଁ। उस समय तक मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था। आज वो भी मेरे साथ कराटे कर रहा है और हम लोग करीब करीब सेम ग्रेड में हैं। वो सेंसे विकास साहू छत्तीसगढ़ में रायपुर में चला रहे हैं। शुरुआती दौर में कराटे को प्रमोट करने के लिए हमने काफ़ी स्कूलों में गए, जिसमें रेगुलर हमारा आपका रहा डिस्विया स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, कार्मल स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल में करीब करीब 35-40 साल उसमें मैंने कराया। इसके अलावा पहले राउरकेला में RAC हुआ करता था, वो उस कॉलेज में भी सिखाए हैं। उसमें भी बाहर के भी लोग थे और जब राउरकेला में रशियन लोग यहाँ पर आ रहे थे तो उनके बच्चों को भी मैंने सिखाया है। तो इस तरह का ट्रेनिंग का तो मेरा हुआ काफ़ी। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में खुरानिया साहब जब SP थे यहाँ पर राउरकेला में, तो उन्होंने मुझे एक प्लाटून को दिया था सिखाने के लिए। उसके बाद में उन्होंने प्रभावित होकर 188 कांस्टेबल को सिखाने के लिए, जब वो IG बनकर संबलपुर में थे तो वहाँ मुझे बोले सिखाने के लिए कि मैं होमगार्ड में लेडीज़ों को सिखाया हूँ। लेडीज़ों को मैंने ट्रेनिंग करा के जूडो का ट्रेनिंग भी कराया। साथ में कुरुक्षेत्र गए थे जिसमें उड़ीसा 3rd प्लेस आ गया था, जिसमें उड़ीसा का नाम होमगार्ड के लड़कियों लोगों ने उसको आगे बढ़ाया था। मार्शल आर्ट तो काफ़ी फैला है। मार्शल आर्ट में आपका ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गए, वुशु हो गए, इस तरह बहुत से हैं। और अभी तो ऐसा हो गया है, इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज से जाते हैं और वहाँ से उनका मार्शल आर्ट को ला के यहाँ प्रमोट करते हैं
0: जी।
2: और वो वहाँ का इंडिया चीफ कहला जाते हैं। तो अभी ये चलन हो गया है कि आप बाहर से भी किसी कहीं से बुला के ले आइए। लेकिन जहाँ तक मैं कराटे के बारे में आपको बोलूँगा, तो कराटे जो है हमारा काफ़ी पॉपुलर है सारे मार्शल आर्ट से। और करीब करीब हमारा जो JK जापान कराटे एसोसिएशन 170 कंट्री में चल रहा है, जिसमें एक हमारा इंडिया भी है। इनका क्या है, हर साल में 2 दफ़े इंडिया में आते हैं और भी कंट्री में जाते हैं, लेकिन हम इंडिया में इनको बुलाते हैं और इससे हमारे बच्चे लोगों को सही ट्रेनिंग मिलता है, हम लोग अपग्रेड होते रहते हैं। तो हर साल में 2 दफ़े, अभी जैसे जनवरी में आसाम में आए थे, अभी अगस्त में हैदराबाद में आने वाले हैं और इसके बाद फिर जनवरी में गोवा में आएंगे। तो ये लगातार हमारा चयन सिस्टम 50 साल से चल रहा है और ये 50वां साल हमने अभी

0: 2025 में हैदराबाद में बना है, जिसमें इंटर कंट्री का भी पार्टिसिपेशन आए थे, न्यूजीलैंड से आए हुए थे, रसिया से दो टीमें आई हुई थी, इस तरह करके आपका वो इन्विटेशनल टूर्नामेंट भी हुआ था। तो ये हमारा यहाँ तो 50 साल तो से ऊपर हो गया अभी।
1: अच्छा, खेल सर अनेक प्रकार रही, कराटे भी वर्तमान गोटे स्पोर्ट्स ईयर आमर जाऊँ सर, कराटे पिला माने सीखिकी आगो को निजरो कैरियर तैयारी करी परिबे के?
0: मैं एक चीज तो मैं बता रहा हूँ कि कराटे जो है इसका कोई एज नहीं है, आप छोटा बच्चा से लेकर बड़े तक करें। मेरे तो शादी हुआ एक बच्चा होने के बाद मैंने शुरू किया था और अभी भी देखिए मेरा 70 साल 5 महीना हो रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं और हमसे भी बड़े बड़े उम्र के लोग कर रहे हैं। तो कराटे को कैरियर छोड़ दीजिए, आपका जो बहुत सारे गेम खेलते हैं, मैं सभी गेम का मैं प्रमोशन करता भी हूँ, लेकिन सारे गेम में बहुत सारे गेम में ऐसा होता है कि टीम लेकर चलना पड़ता है, पर कराटे एक ऐसा है कि आपको इंडिविजुअल आपको पुश करना पड़ता है अपने आप को, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं और बाकी टीमों जब सपोर्ट करते हैं तब आप बढ़ते हैं। तो कराटे क्या है, आप कैरियर छोड़ दीजिए, आप अपना फायदे के लिए, अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, और प्लस कराटे केवल सेल्फ डिफेंस ही नहीं है, मैं आपको जीने का एक अलग तरीका बतलाता है, जिससे कि आप बहुत अच्छा जेंटलमैन बन सकते हैं
1: जी।
0: अब रहा देखिए कि इतने साल मैं स्कूलों में भी रहा हूँ और काफ़ी मेरे भी बच्चे हैं, मैं अभी मेरा बेटा ब्लैक बेल्ट 6 डिग्री है, मेरी पोती है वो 2nd डिग्री है, हाँ अभी प्लस टू आपका रायपुर में किया रही है।
1: अच्छा।
0: उसका मेरा पोता है अभी क्लास 5 में है, वो 1st डिग्री ब्लैक बेल्ट है, तो हमारा 3 जनरेशन तो इसमें लगे हुए हैं। एजुकेशन तो ज़रूरत है, पर ऐसा होता है कि एजुकेशन को ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाल देते हैं कि दूसरा कार्यक्रम जो है वो धीरे धीरे पीछे हो जाता है, अभी स्पोर्ट्स भी दब जाता है क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है। अब बच्चा पढ़ता तो जरूर है स्कूल में, उसके बाद में आता है ट्यूशन भागता है, ट्यूशन के बाद कोचिंग सेंटर भागता है, इवन देखता हूँ कि वो संडे भी उनको बुला लिया जाता है। तो बच्चे का जो सभी तरफ से जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम लोग उसका नुकसान कर बैठते हैं।
1: तेबे सर कराटे खेल तो आप कहले सेल्फ डिफेंस गोटे सी आपको नहीं कैरियर भी गढ़ी पारे, तेज सर कराटे खेल तो आगुरी आपण मैंने जितेबले शिखुले वर्तमान खेल भितर बहुत किसी तफात रही, वर्तमान तो बहुत आगक बढ़ी सबकि खेल, तेज सर कराटेर वर्तमान कौन सब रूल रेगुलेसन अच्छी खेल में पिला मैंने जिते बाहर को खेल को रूल गुड़ाक मानवा पड़ू से सब कहते।
0: देखिए जो कराटे जो है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से अटैच है, तो वो लोग क्या करते हैं जब जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से रूल्स भी उनको बनाते हैं और लोग उसमें अपग्रेड भी होते हैं, जो जाते अपग्रेड होते हैं, जो नहीं जाते हैं वो पुराना चलता है। तो ये आपका टूर्नामेंट्स वगैरह तो होते रहता है, पर अभी ऐसा हो गया है कि जिस चीज़ की पॉपुलरिटी बढ़ जाती है उसके अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ा जाता है और ये स्वाभाविक है, वो होता ही होता है। अब सपोज हमारा उड़ीसा में जब आपका यूथ अफेयर्स मिनिस्टर बोले कि आपको 500 ब्लैक बेल्ट दीजिए, मैं स्कूलों में जाकर सिखाऊंगा, हमारे बच्चे सीखेंगे बोल के, और वो सरकार का तरफ से हो रहा था। अब स्टेट बॉडी को बोला भाई 500 ब्लैक बेल्ट ला कर दीजिए, अब ब्लैक बेल्ट तो 500 है नहीं, फिर क्या किया जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया कि जो ब्लैक बेल्ट नहीं थे, ब्राउन बेल्ट थे, ग्रीन बेल्ट थे, उनको भी सडन कोर्स करा के बोला भाई ठीक है आपको मैं ब्लैक बेल्ट प्रमोट करता हूँ, आप जाके स्कूलों में सिखाइए ताकि उड़ीसा गवर्नमेंट का जो सोच है वो पूरा हो। अब वो तो एक अच्छा आइडिया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो एक आदत बन गई। तो अब क्या है कि कम सीख के भी लोग इंस्ट्रक्टर बनने लग गए और ये रिवाज बन गया कि चलो भाई उनको ब्लैक बेल्ट दो, वहाँ पर क्लास सिखाएंगे और फिर पैसा आने लगा। तो ये सोच पहले अच्छा था, लेकिन अब उसका मिसयूज होने लगा। मैम रूल में तो ऐसा है मैम कि आपका एक इंडिविजुअल भी गेम है और टीम का भी गेम है, तो इसमें दो तरह के इवेंट होते हैं, एक काता होता है, एक फाइटिंग होता है, कुमित होता है। तो काता का टीम में 3 जन मिलके एक टीम बनती है, तो अलग अलग टीम आती है उसमें से जो भी आपका 1st सेकंड होना है, और कुमिते में 5+1 6 जन का एक टीम बनता है अपना सेट से, और इंडिविजुअल होता है, दो तरह के इवेंट होते हैं, पहले चला रहा और आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा। मैम
1: तेबे श्रोता बंधु कार्यक्रम टी को आगे नबा पूर्वरु आसंतु सुनी नेबा एही सुंदर गीतटी को।

0: जाते हैं, वो भी नेशनल मीट में ब्लैक बेल्ट का एग्जाम होते हैं जिसमें जापानीज मास्टर रहते हैं उसमें।
1: तेबे सर विभिन्न प्रकार खेल रही ओडिशा गवर्नमेंट अप्रूव करछि जे सेमान खेलला परे नेशनल खेलला परे चाकरी मिलुछि ओडिशा पुलिस रे, कराटे को भी ता धेरे ऐड करा है छि कि?
0: पहले तो चल ही रहा था मैम, लेकिन बीच में जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक स्पोर्ट्स का कोड बनाया है, उसमें अभी जब तक लोग नहीं आएंगे उसके हिसाब से वो काम नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अभी विड्रॉ करके रखे हैं।
1: अच्छा,
0: ऐसे कुछ साल पहले तक तो चल ही रहा था, अभी सडन में भी कलर नेशनल जो है इंडिया गवर्नमेंट ने इसको रोक के रखा है।
1: अच्छा।
0: अभी हमारे यहाँ पर 5 नेशनल फेडरेशन है, उनको कहते हैं कि भाई आप मिल के आइए, नहीं तो फिर ये क्या करते हैं आगे देखते हैं।
1: अच्छा, तबे सर ओडिशा रे को जगह रे भल कराटे सिखा होची, कोच भल अछंती, ओसेटी भल रहीची, पिला माने सिखिबा पई भल व्यवस्था भी रहीची?
0: मैम ये व्यवस्था के लिए तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग उतना जगह दे नहीं पाते हैं, बोलते भाई 100 बच्चा करेगा तो जगह ये हो जाएगा, तो थोड़ा सा जगह का दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी लोग अभी तो गांव-गांव में भी कर रहे हैं। हाँ, इंस्ट्रक्टर बढ़ गए हैं, सिखाने वाले बढ़ गए हैं और सीखने वाले बढ़ गए हैं, तो है।
1: सर वर्तमान गोटे झील बाहर को बाहर से सुरक्षित नुहे, कारण बहुत किछि एमिति आमे खबर पढ़ुचंती बा देखुचंती सुनुचंती जोठी कि रातिर झियटे जिबाकु निरापद मने करूनी, झिय हो कि पुआ हो मार्शल आर्ट सिखि के से निजो को निजे रक्षा करि परिबो के?
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन बड़ा तो नेगेटिव बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं किसी के लिए ये मना नहीं कर रहा, आप डांस कराइए बहुत अच्छा बात है, डांस में ये फिटनेस आपका होता है, पर आप सप्ताह में एक या दो दिन को कराटे में भी डालिए, ताइक्वांडो में डालिए, मार्शल आर्ट में डालिए, लेकिन आप टोटल फोकस करते हैं डांस में, या फिर कोई गेम कर रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं तो भाई ठीक है फुटबॉल खिलाइए, लेकिन सप्ताह में दो दिन को मार्शल आर्ट करने दीजिए। तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है या बच्चा है, पेरेंट्स को चाहिए, टीचर को चाहिए कि उनको समय दें ताकि वो खेल पाएं। कराटे में तो हर कुछ कला ये सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ है, हम लोग पंच करते हैं तो किसी ने हाथ पकड़ा तो पंच मारे, तो सुरक्षा तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सेल्फ डिफेंस तो 110% है मैम। कराटे वाला देखिए उसका वो एल्बो से भी स्ट्राइक कर सकता है, हर तरह से उसका है, और इतना जो हम लोग उसको सिखाते हैं काता सिखाते हैं, काता में मुड़ने के लिए अलग अलग तरीके से मुड़ना होता है, तो बॉडी उनका उतना सक्रिय ये हो जाता है मुड़ने का कि वो जब भी एक अटैक आता है तो बचाव कर लेगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, वो एक या दो तीन जन से भी कर सकता है, लेकिन आपको उस समय देखना है कि मैं मारूंगा तो मेरा थाना हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, केस हो जाएगा, आप जरा रुकेंगे तो आप मार खा सकते हैं, आपको वहां रुकना नहीं है, आप सेल्फ डिफेंस के लिए मारिए, फिर थाना होगा, पुलिस होगा, जो होगा देखा जाएगा, तो आप बच सकते हैं।
1: तेबे सर आपण तो कहिले जणे कराटे सिखिकि निजर से सुरक्षा करि परिबो, तेबे सर राउरकेला रे वर्तमान आपण जो जो स्कूल गुडाक रे सिखौचंती बा आपणकर निजर भी कोचिंग सेंटर अछि आपण सिखौचंती सेठी पिला मानंकर केते आग्रह देखुचंती खेल सिखिबारे कराटे सिखिबारे?
0: मे बी लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा चेंजेस आया है, लॉकडाउन के पहले तो काफी आग्रह था, पेरेंट्स का भी था, अभी तो मोबाइल वगैरह हो गया, उसके अलावा फिर क्या है, सोच में परिवर्तन आया।
1: अच्छा,
0: वही चीज मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए, प्रिंसिपल को चाहिए, टीचर को चाहिए कि भाई आप 1.5 घंटा उनको खेलने का समय दीजिए, 4:30 से 6 बच्चों को इंगेज मत कीजिए, उनको खेलने दीजिए, जो खेलना चाहता है खेलने दीजिए, सब 5 दिन 6 दिन खेले, 2 दिन कराटे करें, संडे के दिन तो मत पढ़ाइए बच्चों को, आप पढ़ा के उसको उतना फ़ायदा नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो मैं खुद मेरे बकले ये नाती पोता है पढ़ने वाले, मैं कहता हूँ संडे मत पढ़ाइए उनको, एक्स्ट्रा करिकुलम क्या कैसे करेगा मैम, हम चाहेंगे ड्राइंग भी अच्छा कर ले, वो भी अच्छा कर ले, तो स्कूल में तो आप ड्राइंग के लिए तो अलग से आप टाइम देते नहीं है, वॉचिंग का टाइम देते नहीं है, तो एक दिन संडे को आप मत इंगेज कीजिए बच्चों को पढ़ाई में, और डेली 1.5 घंटा आप उनको खेलने के लिए छोड़िए, लेके जाइए, फुटबॉल खिलाइए, कबड्डी खिलाइए, मैदान में खिलाइए उसको, तभी हमारा आगे बढ़ेगा।
1: तेबे सर आपण निजे भी खेलु थिले, तो आपण जेतेबेले खेलु थिले को को जगह को सब जाइछंती खेलिया पई, आउ आमर ओडिसा ओडिसा बाहर जो प्लेयर माने अछंती कराटेरे सेमानंकर खेल आम खेल भीतर कौन डिफरेंस आपण फील करिछंदे?
0: 89 में मैं गया था बॉम्बे, 90 में दिल्ली, 91 में मणिपुर, 92 में इंदौर, 94 में बॉम्बे, इस तरह करके फिर गोवा, हैदराबाद में जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहे हैं। हमारा राउरकेला का 3 तरह के हैं, एक हमारा RSP एम्प्लॉइज का सोच एक अलग टाइप का है, उसके बाद जो बिजनेसमैन का एक सोच अलग तरफ का है, सिविल टाउनशिप का रहते हैं सोच अलग है, सबका डिफरेंट डिफरेंट सोच तो है, क्योंकि एरिया भी ऐसा बटा हुआ है, तो उसके हिसाब से क्या है वो एक जाके मिलके कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, सरकार जो है बड़ा मेहनत कर रही है, गांव गांव में स्टेडियम बना रही है, सब कुछ कर रही है। अब

0: बच्चों को क्या है, मैदान नहीं मिल रहा खेलने के लिए, है वो स्टेडियम में उसको जाने को मिलता नहीं है, मैदान को बच्चे नहीं मिलते, स्टेडियम को बच्चे नहीं मिलते हैं। कैसे हम सभी को चाहिए बच्चों को हम किस तरह से स्टेडियम में पहुंचाएं? ये जो छोटे छोटे मैदान है घर के सामने में कचरा फेंकते हैं, अगर हम लोग सोसाइटी बना के अगर उसको ग्राउंड को ठीक करें और बच्चों को खेलने दें, उसके बाद में जो ऊपर लेवल में जो स्टेडियम है उनको बीच में जो बुलाया जाए, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा लोकल, आपको जो गली का क्रिकेट हुआ, गली का कबड्डी हुआ, गली में जो बच्चे खेलते हैं उनको आप रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको टीम बनाने दीजिए, वो जो पड़िया में जगह है उसको आप साफ सुथरा कीजिए, उसके बाद बच्चा जब आगे बढ़ेगा उसको स्टेडियम भी बीच बीच में खिलाइए, क्यों नहीं हमारा स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए मैम, स्टेडियम में भीड़ नहीं लगती है, सिविक सेंटर में एक प्रोग्राम होता है, पूरा हाउसफुल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है मैम? हम लोग को कोई भी अगर एक प्रोग्राम करता है तो हम सबको मिलकर उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको जाना है, ये नहीं देखना हो मेरा उससे पटता है नहीं पटता हो, नहीं देखना है, तो ये तो थोड़ा करना पड़ेगा हम लोग को सोशल ये के हिसाब से।
1: वर्तमान आपन को 70 वर्ष तथापि आपन बहुत एक्टिव अछंती, एबे भी पिल्ला मानन को आपन कराटे सिखौछंती आ सब प्रकार कार्यक्रम रे भी मध्य आपन भाग नउछंती, तेबे शेषरे हमर श्रोता बंधु मानन को कोन मेसेज दबा पई चाहिबे?
0: मैसेज तो मैं यही बोलूंगा कि आप बच्चों को आप खेलने के लिए मैदान में लेके जाइए, कम से कम डेली 1.5 घंटा मैंने ऐसा टाइम भी सोच के रखा है 4:30 से 6 बच्चों को खेलने के लिए भेजिए, और सप्ताह में 2 दिन आप उनको कोई भी मार्शल आर्ट करने के लिए भेजिए, इससे बच्चा डिसिप्लिन भी हो जाएगा, उनका बॉडी फिटनेस भी रहेगा और आपका शरीर भी अच्छा रहेगा।
1: तबे धन्यवाद सर, आपण आमर कार्यक्रम को आसिले एवं आमर श्रोता बंधु मानको कराटे खेल विषय बहुत किछि जणैले, सेतिपई आपणको राउरकेला आकाशवाणी केन्द्र तरफ रो बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं चलते चलते ये बोलना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल मैं ये डिसूजा स्कूल में सिखा रहा हूँ सप्ताह में 1 दिन, और राउरकेला क्लब में मेरा रेगुलर क्लास है, संडे मॉर्निंग 7 to 9 है और वेडनेसडे इवनिंग 5 to 6:30 है, सप्ताह में 2 दिन मैं राउरकेला क्लब सेक्टर 20 में वहाँ सिखा रहा हूँ मैं।

0: सूचना शिक्षा और मनोरंजन बेतार बाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी राउरकेला श्रोता बंधु समय बर्तमान स्टूडियो घड़ी सकाल 8:00 हाबक जाउची आमर परवर्ती कार्यक्रम शुणिपारे समाचार प्रभात परे परे मॉर्निंग न्यूज रे इंग्रजी रे संवाद रिले करछु आकाशवाणी दिल्ली रु किछि समय मध्यरे।

0: के साथ मैं फरहत नाज और अब मुख्य समाचार संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी

0: बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
1: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब

0: खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people of
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियां और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
5: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित

0: किया जाएगा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है एक रिपोर्ट
1: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद सेब का सिरका शुद्ध नारियल तेल तिल का तेल गाय का घी नारियल पानी नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक 100% शुद्ध 100% शुद्धता की गारंटी 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी
0: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है खासकर बालेश्वर भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन सुरक्षित पेयजल स्वास्थ्य सेवाएं पशु चिकित्सा सेवाएं पॉलीथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं प्रकाश दास आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर
0: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है एक रिपोर्ट
3: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कचार डिमा हसाव पश्चिम कार्बी आंगलोंग विश्वनाथ लखीमपुर धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है जिसका प्रभाव सरायदेव शिवसागर जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है राकेश दोले आकाशवाणी समाचार गुवाहाटी
0: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहीं अरुणाचल प्रदेश बिहार नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है विभाग के अनुसार दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ जम्मू और कश्मीर केरलम माहे हिमाचल प्रदेश उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है और अब बात खेलों की कर लेते हैं भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज मिथुन मंजुनाथ थारुन मन्नपल्ली रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती
4: धन्यवाद फरहत बिहार मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार जनसत्ता लिखता है जीते प्रशांत विरोधी अशांत भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढाहा उपचुनाव में करारी हार हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है

0: जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोक सत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट, डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Parliamentary committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook, seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. U.S. President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
3: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए।
2: Prime Minister Modi has underlined that talents are honed and refined through continuous effort and dedication. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that today the youth of the country are imbibing these very qualities and illuminating India's name across the world. The National Democratic Alliance or NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, had also participated in the alliance meeting. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. Secretary of Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. This meeting builds upon

सब कुशल मंगल। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें सोनू कक्कर और वंदना सक्सेना की थी, समीर अनजान के बोल थे। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था फिल्म किसी का भाई किसी के जान से, कमल खान और पलक मुछाल की आवाज़ों में। वो गीत आपने सुना था शबीर अहमद के बोल थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो लिया जाए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनवाएंगे गाने।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। अब आपको चित्रलोक कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं अरमान खान की आवाज में हक फिल्म का ये गाना।

0: अरमान खान और साथियों की आवाज़ों में हक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया कौशल किशोर ने और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्मतिथि है। महान गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और कई भाषाओं में गीत गाए। अपनी अनूठी गायकी, चंचल अंदाज और बहुमुखी प्रतिभा से करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक किशोर कुमार पर। आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 और सुबह 9:30।
1: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में गुलजार का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था डेढ़ इश्किया और इस गीत को संगीत से संवारा था विशाल भारद्वाज ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

पटाखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रेखा भारद्वाज की आवाज थी, गुलजार के बोल थे, विशाल भारद्वाज का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक और बहुत छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। साथियों, आज भारतीय सिनेमा के ऐसे बहुमुखी रचनाकार का जन्मदिन है जिन्होंने निर्देशन, पटकथा लेखन, संगीत निर्देशन और फिल्म निर्माण हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। विशाल भारद्वाज का जन्म 4 अगस्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शिकारपुर ग्राम में हुआ था। विशाल भारद्वाज ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत संगीतकार के रूप में की थी, लेकिन एक निर्देशक के रूप में एक अलग पहचान बनाई। मकबूल, ओमकारा, कमीने, हैदर और पटाखा जैसी फिल्मों ने उन्हें देश विदेश में विशेष सम्मान दिलाया। उन्हें गॉडमदर और इश्किया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके स्वस्थ, सफल और सृजनशील जीवन की मंगल कामना करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से फिल्मकार, संगीतकार विशाल भारद्वाज को जन्मदिन की अनेकों नेक शुभकामनाएं देते हैं। एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें, ओमकारा फिल्म का ये गीत सुनिए। निकल गए दुनिया रे, गुलजार के बोल हैं, विशाल भारद्वाज का संगीत है।

विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में रेखा भारद्वाज और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार ने इस गीत को लिखा था, ओंकारा फिल्म का गीत आपने अभी सुना। और अब लीजिए सुनिए शशि डीजे खुशी की आवाज में लक्ष्मी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गगन आहूजा और संगीतकार हैं शशि डीजे खुशी।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ सकुशल और समृद्ध रहें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

यह है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोर दा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोर दा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था थी।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

0: मदने गले मदने की दुआएं।
1: सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलील दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।
2: अच्छा।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: बात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये।

किशोरदा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम है दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए। हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए। ओ तेरी तिरछी नजरिया
2: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
0: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोरदा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माध्यम रे प्राय 60 कोटी लोक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा उपचार पई होईछंते योग्य हिताधिकारी ए पर्यंत 12 कोटी रु ऊर्ध मागणा चिकित्सा करा जाई छे जेउथरे गरीब परिवारक चिकित्सा खर्च प्राय 2 लाख कोटी टंका संचय होई परिछि आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करी आयुष्मान कार्ड बनंतु अधिक सूचना पई 14555 नंबर को कॉल करंतु
1: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିନେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ ଶୁଣିବା ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଗୀତରୁ ଗାଇଛନ୍ତି କିଶୋର କୁମାର ଏବଂ ସାଥୀ ରଚନା ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତର ସଙ୍ଗୀତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ୟାରେଲାଲ

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर ही रखें। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 5:25 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।